0: शोर
1: भूल गए
2: जान मेरा नाम
1: अच्छा
2: चोरी मेरा काम जान मेरा नाम और चोरी मेरा काम राम और श्याम
1: बंडल बाज
2: लड़के मिलन गीत गाता चल
1: बेशरम
2: चार का मौसम
1: बेशरम

0: ज्योतिषी कुमार बेतलिया।
1: बाहर से कोई अंदर ना आ सके, अंदर से कोई बाहर ना जा सके।